तेरा करण बधाई तुद करमान मत तेज अपने आप जर सर्वकला भरपूर दी सचित कता नानक दास दास दया गए बिन बता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता।

दिल्ली में शीशगंज काबगंज बाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेबा दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बला रे।

गरीब निवाज पाशा महाराज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पाशा महाराज जी आप अपार कृपा रहम बख्शिश तरस कीता महाराज जी वे बच्चों पासों कीर्तन की हाजिरी प्रवाई शुकराना सतगुरु जी गुरमुख प्यारे वालों शब्द भेट वजो माया हाजिर करते ने पातशाह जी सतगुरु जी नाम जानी जान सभना दियाँ मनोकामना भावनावान छम पुनित ने महाराज साहब लेके चलाना माया विच बरकत बख्श करने दे अरोगता तंतियां बख्शिश करनिया महाराज जी अपने चन्ना नाल प्रीति नाल जोड़ी रखना नाम बाणी दात बख्शिश करके निवाजना दरों करों खुशियां बख्शिश करनी यात्रा साफ निकली

को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुकुटा को मूर्ता कहाँ तरक अवतरक दोहरा। को निंदा जस है।

अष्टाद चमके भूखण धमके अद्धित झमके फुंक फनंग जय जय हो सी मासुर मर्दन रम कबर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंड।

करण प्रणासन चंद प्रकाशन सूज प्रते जन अष्ट भुजे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन परम विनाशन धरम तुझे घुंगुरु कमंकण सत्र जमंकण फणी अर्पुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमताहे एक वृते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अथ मुदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसो

संकट निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार खण दुंद तबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस प्रकार खण आद नील गाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा गुठा।

सुर नर प्रतिवारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे। जय जय हो सी मैं का दुर्मर्दन विश्व विदुन संसृष्ट करे। दामनी प्रकाशे उन तरना से ज्योत प्रकाशे तुल बले दान वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दोष।

डुग डुगी दमंगे बाघ बबंगे भुजा फरंगे सुध गते जय जय हो सी मैं गाजुर मर्दन आद जुगाद नाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान वे अंडन दुज प्रचंडन खंड अखंड।

सुरमर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल वधे सरधार विपरखण दुर्जन धरखण दुर्लमरखण धरम दुजे। धूमराज विदुन संसुणत चुन संसुंभनत शुंभन पातन शुंभ मथे जय जय हो सी मैं घासुर मर्दन आद नीला गाद कथे।

जानी न जाय जय रूप रेख कहे बात दास कहे कौन भेग कहे नाम ताज है कवन जात जे सत्र मित्र नहीं पुत्र ब्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चहन नहीं रंग रूप जय खेत वेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल और धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल तल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निशित नो चरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोक दहता उतार कई गोट इंद्र जय पान हार कई गोट रुद्र जुगी।

अखंड चंड पारण पूरण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमापत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोक राज करो रोहान की रोज नकार है। कीट पतंग कुरंग उजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंग मेव न भेव लख्यो ब्रह्म से ब्रह्माए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सो किन श्री।

न दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह पीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह छह है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुम रे सुंदर श्री।

चलैया छित छत्र के थलैया छत्र धार्य के छलैया महासतरण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है जोत के जतैया विरुद्ध के मटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न बार पाव हिंगुला हिमालय दावे बोर कर दे जी गुण गावे तेरा नाम है जो कि जोग साधे पौन साधना की देख बांधे आरभ के आरवे आराध तेरा नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गोरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी बचाने निज काम है मरहटा मंगेले तेरे मन सो तपस्या करे।

देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश न दीन साध दीन का ही अत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार का ही अत है। हाथी की पुकार पल पाछे।

तका बखानी है अद्व अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी क्या के मानी है जंत्र हूं न जात जा की बाप हूं न माय ताकि पूर्ण प्रभा के सो छटा के अन मानी है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है ने जंत्र कह के जानी है तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खाना है के साधना की शान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है काम को गुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल होंगे काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भूगत के वृद्धता की बासी है जो गुहों को जंत्र है के तेज होंगे तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध होंगे घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को

राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरय ध्रुव मचाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के गोल के हंस निसी सिहारो में ही रसी हुसैन आबाद गंगा कैसी धार चली सत सिंध रूल के पारसी पल्लवगढ़ रूपा कैसे रामपुर सोरसी सुरंगाबाद नीके रही झूल के जम्पासी चंदेरी गोड चांदरी सी चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी के लाज कमाऊगढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद नीके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी जम्बावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान सी बिलंदवाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोर कखरी गर्दे जचारी बौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ सर्वटोर मैं विराज जा

0: कृपान कलगीधर स्वामी धान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
1: बोले।

कवन कवन गुण कह कह गा तू साहेब गुणी नंदाना तुमरी महिमा वर्णना साको तू ठाकरूच। जे महाराज किसी नूं तीर भी मारदे सी ना उहदा भी फिक्र करदे सी आखो सतनाम उहदा फिक्र भी करदे सी। हुण कहिंदे जदों तीर सैद खां जरनैल दे पावे विच वज्जे भगदड़ मच गई भी तीर किधरों आया। कहिंदे देखो कोई लुकिया ते नहीं बैठा कुछ छुपाई इन्ना आसा पासा वेखण लग गया अजे संभलदा इन्नी चिर नूं महाराज ने दूजा तीर छड़ता।

0: दर्शन देखते ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना
1: मत है,
0: मत है। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जोए, लागत ही भोए गिर परया परा कलेजे। छेक बस हथों हथियार छुट गए भाई, गोड़ियां परने होके बह गया सतगुरु जी दे सामने फिर हाथ

खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणे सर्विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कैल करोड़ सच्चे सुप्तान।

0: सच ते आयन सच जो मर जमै सो कच नि कच महला पहला।
1: वडी वडियाई जा वड्डा नाओ, वडी वडियाई जा सच न्याओ, वडी

लख सुटन संग्राम रण में छुटे पुराण, लख सुटी लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते